मिस्टर यूनिक मुख्तार। मैं करूँ नकलों कई बार से सोचा, रुका मन में पड़ा तेरी यादों का बोझ, हर दिन बड़े रफ्तार फ्लो की लगे ऐसे सुनती हूँ यूनिक के गाने। मैं करूँगा विचार तेरे जज्बे का, किया ऐसे जैसे हो किंग की रानी। रखो अच्छी सोच को मन में, काबिल लोग करेंगे जहार तेरा स्टेज पे आने का।

Elimbu FM 89.6 MHz. हेलम्बु FM 89.6 MHz मा अब तपाईँ सुन्न सक्नुहुन्छ हेलम्बु खबर।

0: Elimbu FM 89.6 MHz.
1: हेलम्बु FM 89.6 MHz मा अब तपाईँ सुन्न सक्नुहुन्छ हेलम्बु खबर।